आयुश्च प्राणश्च मुखन्तरियाय नावभ्यासिदन्तिरक्षोद्योषमरवरसः शुभं कल्याणं।